भूतं अमर भीरधाम का परातन कुमार धनंदीर बलंगादेश पोपो हनुमंता देवता प्रभाकितो भांदुं को भांदुं जावरास्ती भांदुं सर्पगण फुले भांदुं नक्षत्र सत्य भांदुं और रात्रि राग मदन मोहिनी इन्हीं खंडुरे जाला खंडुरे मल खंडुरे सेंडस लंग पल पल वरा वरा कामिनी मदरे किनी आउट वाह खामे किनी मगरु आस्तियों लंग चलित करो।

भैया की दादा मेरे की मुस्को डोला की बीमोरी बाजे की जीस तुरो टारुई लगा सी गिले आप हाथ टारुई लगा सी गिले आप